0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You're nominated. Kuki Mehndi with Don't Be Shy. Do you have 15,000 dirhams to your name? Kya aapke naam pe 15,000 dirham hai? It could be in your bank account, could be anything that you own. Then you are richer than half the people on planet Earth.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: How is that as a thought to get you up and running in the morning? Thoda agar aap low feel kar rahe hain, at least thoda sa better to aap us fat ko sunke feel kar hi rahe honge. Haan, to phir aao.
2: Phir aao, mujhko.
0: तो फिर आओ साथ मिलकर शुरू करते हैं द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे. दिस सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. कोई गाना अगर आपको सुनना है, यू नो द डील. द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी मॉर्निंग इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आवर. व्हाट्सएप नंबर 0543091062 एंड यू कैन रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट सॉन्ग. व्हाट इज दैट वन सॉन्ग जो आपका मूड बनाता है ऑन दिस वेंसडे मॉर्निंग, बट ओनली टिल 8 AM. दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: बिग

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good morning. It's 7:21 on the clock. And kya hal chaal hai? It's the 26th of August. And Wednesday ki subah. Back to school mein sirf 5 din bache hue hain. This is the last weekend before back to school. And taxi drivers have actually come forward and given some advice. Keh rahe hain ki at least 15 se 30 minute ke delay to hone hi hone wale hain. That's something that all of us know. But specifically, they warned about Karama, Bardubai. These are the areas jahan pe भयंकर ट्रैफिक होने के चांसेस हैं. करामा, बर्दुबाई, ऊद मेथा, गरहूद, अल्तवार, अलनादा, अलबर्शा एंड अलकूज. दीज आर द एरियाज वी गुड बी स्पेशली केयरफुल. सो अगर आप इफ यू स्टे अराउंड दीज एरियाज हेडिंग आउट टू वर्क और अगर इन ये रास्तों से गुजर के जाते हैं आप ऑन योर वे टू वर्क देन बी वेरी वेरी केयरफुल. दैट्स व्हाट द टैक्सी ड्राइवर्स हैव सेड. इनफैक्ट स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ एडवाइस दिया है टू ऑल द ड्राइवर्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. व्हाट आर द गुड सेफ प्रैक्टिसेस बैक टू स्कूल पे. एंड दोज आर द गाइज विद द मोस्ट एक्सपीरियंस राइट. सो वी शुड व्हेनेवर दे से और टॉक सिट अप एंड लिसन टू देम. सो दैट्स कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. ऑल्सो केसरिया तेरा इश्क है पिया. मिनीशा सेंड मी अ मैसेज. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर अ बिट ऑफ केसरिया इन द मॉर्निंग. यप, आई कंप्लीटली एग्री विद यू. Song that really sets up the morning mood, na? Minisha ki tarah, agar aapke paas bhi koi request hai, then WhatsApp it to me 0543091062 par.
2: Main gunda, qatil, jail se bhaga hua mujrim. Sharafat ki kitab mein mujhe khalnayak kehte hain.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
3: हाई स्पीड ऑटोबान, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 0543091062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
0: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
4: School's starting soon and we need a car.
5: Books, uniforms, everything.
4: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
4: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
6: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
7: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली. इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ. डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश. डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन. इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन.
8: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply. Are you ready?

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग इट्स 7:26 ऑन दिस वेडनेसडे। की सुबह 36 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 56%, विंड्स ब्लोइंग एट 14 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 39, लोज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: Right, JK is listening to me all the way in Mumbai.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: And aap jante hain, just like JK, you can listen to us from anywhere in the world. Big1062.com. That's our website, big1062.com. Wahan par jaiye, listen live, dabaiye, and that's it. You can enjoy all of our shows day long, live streaming. Wahan par aap kar sakte hain. And he's done what you're supposed to do in the first hour of the show. Yehi to ye pehla ghanta hai. It's called the early morning request. And he's requested for a song which is completely unexpected, very inspiring. It takes us back to the lockdown ka time, lekin in a good way. I mean, how can lockdown be in a good way? Kuch काफी अमेजिंग क्रिएटिव काम लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था. वन ऑफ दोज थिंग्स इज वॉट जे के हैज रिक्वेस्टेड फॉर ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. इज अ सॉन्ग कॉल्ड शायद, बट द लॉकडाउन वर्जन, जिसमें इट सीम्स लाइक, एंड आई एम श्योर देयर वाज अ लॉट ऑफ मिक्सिंग एंड ऑडियो पोस्ट डन इन दिस. लेकिन ऐसा लगता है कि प्रीतम चक्रवर्ती और अरिजीत सिंह ये गाना गा रहे हैं ऑन अ जूम कॉल. या सो हियर्स शायद का लॉकडाउन वर्जन. जे के, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट्सएपिंग मी. आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं 0543091062 पर. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

I don't know how they manage it despite all the Zoom car delay and all of that. But yeah, it seemed like they're singing across Zoom. What a fabulous song. Thank you so much, JK, for requesting for that one. That was the lockdown version of Shayad. Khair, 5 days bache hain, back to school Monday se shuru hone wala hai. And har back to school season se pehle, there are this kind of place in the UAE jahan par ek ek ghante ki line lagti hai. कौन सी वो जगह है अगर आपको पता है देन सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062. एक एक घंटे की लाइन किस टाइप की जगह के बाहर लगती है राइट बिफोर बैक टू स्कूल. दिस ईयर इज नो डिफरेंट. दैट्स कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. कीप इट लॉक्ड. दिस इज बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फनी एशिया नेटवर्क.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: Bollywood.

0: And talking about tabahi, there are some tabahis that we love to go through together. It happens every single year around this year, this time.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurancemarket.ie.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: I'd ask you a question about this the last time. Ki yaar, kaun si wo ek cheez hoti hai jo hum log har back to school season mein karte hain, yani ki kaun si wo type ki jagah hai jiske bahar ek ek ghante ki line lagti hai right before back to school every single season without fail. And of course the correct answer, thank you so much to all those people who WhatsApp me, the correct answer is bachcho ke school uniform ki dukan ke bahar ek ek ghante ki line lagti hai aur is bar bhi lagi hai. It's amazing. It's amazing. I mean, and if you're one of those people who are in that line, don't get frustrated. Don't beat yourself up about it. It's one of those very deliciously, you know, unorganized things that we like to do. Yaar, itna bhi kya organized ke school uniform? Nahi. Focus on the prize. Focus on the vacation. Acche se summer vacation. अच्छे से बिताने पे फोकस करो, उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह तो देखी जाएगी. सो व्हाट आर द शॉपकीपर्स डूइंग राइट, एक एक घंटे की वेट के बावजूद यू नो पीपल आर नॉट गेटिंग द यूनिफॉर्म्स. तो दे आर सेइंग कि अगर नॉन अर्जेंट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्टर्स क्लिनिक राइट, इफ इट्स नॉट अर्जेंट, अगर पिछले साल की यूनिफॉर्म थोड़ा सा भी चांस है कि वो चलेगी इस साल, सो प्लीज कम बैक आफ्टर द फर्स्ट और सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर. सो आई एम गोना बी टेकिंग द लिबर्टी टू अनाउंस दिस ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्ट मीडियम राइट हियर के अगर पिछले साल की पिछले सीजन की एकेडमिक सीजन की यूनिफॉर्म फिट आ रही है आपके बच्चे, प्लीज़ वहाँ पर जाकर भीड़ मत करो यूनिफॉर्म की दुकान के बाहर. वेट टिल द फर्स्ट सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर. इफ यू आर अ पेरेंट एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस लाइन, गिव मी अ कॉल, लेट मी नो द एक्सपीरियंस. 800-1062 पर. This is the Big Breakfast with me, Sid. Here's Romy with Pyar Tenu Karda Gabdu.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Right, and if you need an evening to slow down and unwind, 29th of August, देखो क्या है कि 28th को तो long weekend शुरू हो जाएगा, and then you would have done something thasu for the past couple of days, and then इतनी ज़्यादा मस्ती के बाद, if you want to just unwind, and of course 31st is back to school as well, so if you want to like chill out, relax, Zikr brings India's celebrated storyteller Amandeep Khayal to Dubai for the very first time with his show which is called Dhak Dhak. यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट पोएट्री, सोल स्टिरिंग स्टोरीज एंड वार्म चाय. और ये होगा जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो स्टार्ट्स एट 5:30 PM. टिकट स्टार्ट्स एट 199 dirhams, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग. एंड दिस राइट हियर इज अ चांस फॉर यू टू विन कपल इन्वाइट्स फॉर दिस अनमिसेबल शो. राइट, सो मैं आपको तीन गाने सुनाने वाला हूँ, तीन गाने ऑफ वन पर्टिकुलर सिंगर, एंड द सॉन्ग्स आर ऑफ दैट सेम मेलो, यू नो, चिल्ड आउट मूड. सो इन तीन गानों को सुनिए, बताइए कि सिंगर का नाम क्या है. दैट सॉन्ग नंबर वन.
2: या फिर आबाद कर दो.
1: सॉन्ग नंबर टू इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स.
2: फिर ले आया दिल मजबूर.
1: एंड हियर्स सॉन्ग नंबर थ्री.
2: दिल जला के मुस्कुरा.
1: अगर आपने पहचान लिया कि ये सिंगर कौन है, वेरी वेरी सिंपल, गिव मी अ कॉल राइट नाउ. 800-1062, दैट्स द नंबर. 800-1062, यू कुड विन टू इनवाइट्स फॉर Zikr presents Dhak Dhak Amandeep Khayal live for the first time in Dubai, 29th of August. The number is 800-1062.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: It is a Wednesday morning. And I've got Leena with me on the phone line. Leena, oh Leena, Leena, Leena. Iska second line kya hai? Dil tujhko something, huh? What is it?
1: It's Abdul.
0: Huh?
1: Abdul.
0: Abdul?
1: Haan ji.
0: Matlab?
1: Apni second name pucha tha na?
0: अरे नहीं भाई, मैं गाने की सेकंड लाइन पूछ रहा हूँ. इसे कहते हैं भाई क्रॉस कनेक्शन. मैंने कहा सेकंड लाइन क्या है गाने की, कहती अब्दुल है. नहीं नहीं नहीं, अच्छा लीना, अब्दुल इज विद मी ऑन द फोन लाइन. एंड लीना, व्हाट इज द सेकंड लाइन ऑफ दैट सॉन्ग? आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल हैव संग दैट सॉन्ग फॉर यू.
1: नहीं बस इतना तक गा के छोड़ देते हैं ना, मुझे भी नहीं मालूम आगे क्या होता है.
0: यार बिल बड़ी बड़ी कम मेहनत करते लोग हैं. इतने से काम चल जाता है. लीना ओ लीना, लीना लीना लीना, बस इतना ही, दैट्स इट.
1: हाँ नहीं, दिल तूने छीना,
0: दिल तूने छीना. यस यस यस,
1: करेक्ट. हाँ इतना तक तो गाते हैं,
0: इतना तक गाते हैं, उसके बाद फिर आप हाँ कर देते हो. यार ये बहुत ही बुरी बात है लीना.
1: नहीं फिर मैं ऐसे मुड़ जाती हूँ ना, तो फिर बस बंद हो जाती है.
0: जितने यू नो कम मुश्किल हमारे सवाल होते हैं, उतना ही उतनी कम मेहनत आप करवाते हो लोगों से. नॉट डन एट ऑल. बट लीना इज अ टोटल वेटरन इन द वर्ल्ड ऑफ पेरेंटहुड. अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए, आपने मुझे बताया, लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज इसके बारे में, हाउ डू यू फील? हैव यू एवर स्टूड इन लाइन इन योर डे? एक एक घंटे की लाइन में आप खड़े रहे फॉर स्कूल यूनिफॉर्म?
1: नहीं हुआ है एक्चुअली. नहीं मेरे याद में तो नहीं हुआ ऐसे.
0: अच्छा पहले नहीं होता था ऐसा, बट आजकल ऐसा हो गया, एक एक घंटे की लाइन. एंड देन यू नो द यूनिफॉर्म वाले, दुकान वाले कहते हैं कि भाई अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर पिछले सीजन के फिट आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक दो तारीख के बाद आना यार, लाइन मत लगाओ, यहाँ पे भीड़ मत करो. क्या कहना चाहेंगे आप सारे पेरेंट्स को?
1: अच्छा थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे सुनने को नहीं मिल रहा है,
0: स्पेशली इन दुबई. She's got that reaction कि हमारे time पे था, we were living in much simpler times यार लीना, just to make you feel a bit better about yourself.
1: या तो फिर you know planning वगैरह इनकी छूट के ही, I don't know when something has gone wrong. Like हमारे तो planning पहले से, I mean बहुत pre-planning होती थी कि क्या क्या करना है holidays में, ऐसे ना इस last minute तक तो नहीं drag करते थे.
0: Most of the summer vacation was you know used to kind of cover the books. आजकल books cover कोई करता है कि नहीं करता है क्या? I don't even know. वो जो ब्राउन पेपर वाले कवर आते थे विद अ प्लास्टिक लैमिनेट ऑन टॉप ना,
1: शायद मालूम नहीं
0: है ना. एनीवेज एलिना, आर यू इनटू स्टोरी टेलिंग? डू यू वांट टू अनवाइंड दिस सैटरडे?
1: हां जी डेफिनेटली.
0: तो एक अमेजिंग सा शो है व्हिच इज अनमिसेबल, जिक्र ब्रिंग्स टू यू इंडिया सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप ख्याल. ही इज गोना बी इन दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. शो का नाम है धक धक. एंड जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, तीन गाने मैंने आपको सुनाए, एक तो ये वाला था, दूसरा वाला दिस वन, एंड द थर्ड सॉन्ग दैट आई प्लेड आउट वाज. ये तीनों आवाज जो है, ये नहीं एक ही आवाज है, किसकी आवाज है?
1: अरिजीत सिंह, मेरा भी फेवरेट है.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट, कांग्रेचुलेशंस, आपने जीते दो इनवाइट्स एंड नाउ यू गो एंड अनवाइंड.
1: थैंक यू सो मच.
0: ऑन दिस सैटरडे. And the show starts at 5:30, but the doors open at 4:30 p.m. It's happening at GEMS Albarsha National School. Zikr brings to you Amandeep Khayal live on this 29th. So congratulations.
1: Thank you so much.
0: Take care. That is Leena, hamari aaj ki winner hai. And don't forget, you can buy tickets. Tickets start at 199 dirhams, available exclusively on District, including high tea and free parking as well.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: 1 + 1 = 3.
3: That's not right.
2: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
3: Really? And these 4 designs to choose from?
2: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
3: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get Maxi Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ चाहिए। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
7: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
1: Big 106.2. That's my song.
8: ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido toda mi vida con tu querer.
9: Name Samcha, name Jana.

2 पर बिग चेक इन स्पेस से कर अपना नाम, बिकॉज वी हेडिंग आउट टू जर्मनी. सो अगर आप यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम विद टीम बिग टू जर्मनी, बिग चेक इन स्पेस टू नेम टू 0543091062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 9:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's 9:13 on clock on this Wednesday. Ki subah, this is Big 106. Chalo, deta hu aapko main ek formal wala invitation.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: राइट आज सुबह का ये आखिरी बोर्डिंग कॉल है. एक बार करियो एंट्रीज इन व्हाट्सएप करो इफ यू हैवंट ऑलरेडी. अगर कर लिया तो और एक बार फिर से कर लो बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. 0543091062 दैट्स द व्हाट्सएप नंबर. क्या टाइप करना है? टाइप आउट बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम. बिग चेक इन स्पेस अपना नाम आपको भेजना है ऑन 0543091062. अबाउट 20-25 मिनट्स फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग दैट कॉन्टेस्ट कॉल्ड गुटन टाग दिलवाले. गुटन टाग दिलवाले हम लोग खेलने वाले. गुड मॉर्निंग तो आजकल हम लोग बोलते नहीं बिकॉज जर्मनी जाने का मौका आपका विद टीम बिग. सो गुडनाक दिलवाले में क्या होता है ना कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मनी की अमेजिंग सीनरी एंड बॉलीवुड का एक अमेजिंग डायलॉग. सो बॉलीवुड प्लस जर्मनी इज इक्वल टू गुडनाक दिलवाले. सो इफ यू थिंक यू नो योर बॉलीवुड अ बिट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आई बीन आस्किंग. टुडे इज गोना बी नो डिफरेंट. सो एक बार फिर क्या करना है आपको? बिग चेक इन स्पेस अपना नाम. व्हाट्सएप इट टू 0543091062. Awar upon two sales songs coming up in just a while. This is Big 106.2 and we are the beat of Bollywood.
1: Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: कितना एक्साइटेड हम लोग थे यार अबाउट द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हेरा फेरी. चलो दैट डिडंट रियली वर्क आउट. एटलीस्ट प्रियदर्शन इज नॉट डायरेक्टिंग, दैट्स व्हाट वी नो. नाउ बहुत सारी खबरें आ रही हैं दैट अहमद खान हैज स्टेप्ड इन टू डायरेक्ट दैट प्रोजेक्ट एटसेट्रा. बट देखते आगे आगे क्या होता है. बट वन थिंग दैट प्रियदर्शन इज डेफिनेटली गोना बी डायरेक्टिंग इट इज दिस फिल्म कॉल्ड हैवान, विच इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर. एंड अक्षय कुमार कहाँ हेरा फेरी की कॉमेडी कॉमिक टाइमिंग और कहाँ उनकी एक नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑपोजिट सैफ अली खान. सैफ अली खान प्लीज दिस वेरी डेड डेविल, अगर आपने शो देखा है तो उससे इंस्पायर्ड हो सकता है. आई मीन आई डोंट नो के वेदर इट इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड नॉट, बट साउंड्स वेरी मच लाइक दैट. इट्स लाइक अ विजुअली चैलेंज्ड मैन हु इज ऑल्सो लाइक अ म्यूजिक टीचर. एंड देन वो कैसे भिड़ते हैं अगेंस्ट अक्षय कुमार हु इज लाइक लुकिंग क्वाइट अमेजिंग यार. उसका ट्रेलर इस फिल्म का हैवान का ट्रेलर जस्ट केम आउट अ फ्यू आवर्स अगो. And this is my favorite line of the trailer.
2: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना.
1: Yeah, Akshay Kumar playing a negative role in a Priyadarshan movie. It sounds absolutely delicious. Here's how the trailer starts.
3: Sir, उसने मुझे देख लिया sir. Sir, वो मुझे मार देगा sir. मुझे बचा लो sir. Sir, मेरे मुझके हाथ में चाकू है. Sir, sir, sir.
1: Reminds me quite a lot of you know Ashutosh Rana ki wo sankharsh wale din and all of that. So you know what, this is sounding really really good. I cannot wait for Haiwan. Ye Priyadarshan ki directed movie hai and it's got Akshay Kumar. It's also got Baman Irani in a very interesting role. Yeah, it looks very very interesting. There's Sayami Kher also in this one. So Haiwan ka trailer, go check it out.

0: पर ये मत भूल, ये मत भूल, प्रेमी है पागल है दीवाना है।
1: जा अपनी जिंदगी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 9:42 on the clock, and let's say Guten Tag to Hitali. Guten Tag. Hitali, Guten Tag.
2: Hi, Sid, how are you?
1: Are bhai, kya chal raha hai? What is this hi, hello and all of that? Aren't you prepared for Germany? You gotta say Guten Tag.
2: Guten Tag.
1: Guten Tag. High profile professional hai Hitali. She manages not one but two big brands. Kya chal ke itni mehnat?
2: हाँ, बिकॉज फैशन डिटेल में तो यही लाइफ है.
1: तो फिर क्या अपने विल यू गेट लीव फ्रॉम यू एंड द वर्क दैट यू डू?
2: आई विल मेक श्योर दैट आई गेट लीव.
1: ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत करें, आपको जिताएं, उसके बाद कहो नहीं यार, आई एम टू बिजी टू गो यार.
2: इफ इट्स मेंट टू बी इट इज, इफ इट इज नॉट इट इज नॉट.
1: अरे वाह भाई वाह. चलो ठीक है, मतलब जो अपना मोटिवेशनल स्पीच आप देते हो अपने एम्प्लॉयज को, वो मेरे सामने काम नहीं करेगा. बट क्या काम करेगा इज कि आप और मैं चलेंगे जर्मनी साथ मिलकर, एटलीस्ट इन आवर माइंड्स फॉर नाउ बिफोर वी एक्चुअली हेड आउट टू जर्मनी. ऑलराइट, सो हियर्स व्हाट्स गोना हैपन इन गुटन टाग दिलवाले, दैट्स द नेम ऑफ दिस कॉन्टेस्ट. सो पहले मैं थोड़ी सीन सेट करने वाला हूँ. ओके, साथ में हम लोग जर्मनी जाएंगे, आई विल टेल यू के जर्मनी में क्या क्या हो रहा है, एंड देन आई विल प्ले आउट अ डायलॉग फॉर यू. राइट, इन दैट सीन एक डायलॉग मैं आपको सुनाने वाला हूँ फ्रॉम अ वेरी फेमस बॉलीवुड मूवी. अगर आपने पहचान लिया कि ये कौन सी फिल्म है तो आपका नाम चला जाएगा ड्रॉ के अंदर. डील?
2: ओके ओके.
1: आर यू रेडी?
2: यस, रेडी एंड स्केयर्ड.
1: ओके, सो स्टैंडिंग ऑन अ लैविश रेड कार्पेट एट अ बर्लिन फिल्म प्रीमियर next to the person of your dreams. Ye sochiye, you're standing on a lavish red carpet at a Berlin film premiere next to the person of your dreams. Soch liya?
2: Haan.
1: Alright, wahan par ho kya raha hai? Ye ho raha
3: hai. Kehte hain, agar kisi cheez ko dil se chaho, to puri kainat use tumse milane ki koshish mein lag jati hai.
1: Aap bhi sahi jawab dene ki koshish mein lag jaiye. Film ka naam kya hai?
2: It's Om Shanti Om.
1: Oh no, are you serious?
2: No.
1: Are you sure about that?
2: Yeah.
1: It is the correct answer. Congratulations. Hitali, your name goes into the draw and you're one step closer to winning an opportunity to go for this trip of a lifetime. Big check-in to Germany. Now tell me, how are you feeling right now? How badly do you need this vacation?
2: I am scared and I'm excited and I really need this vacation, because I was just thinking today in the morning that yaar, life is so busy, I really need a break, I really need to win something, and I just messaged you guys, you know, so I was like, wow, I got a call, I didn't expect that at all.
1: Sab kuch samajh mein aa gaya, lekin why did you say you're scared?
2: I'm scared because I want to win this. I'm super excited. I mean, I'm nervous. I'm overwhelmed. But I'm really excited.
1: ठीक है, वो तो चलता है. That kind of nervousness तो बनता है, because इतना बड़ा trip भी है. And you know what? I've been a couple of these trips myself. And what really ends up happening, इसको जो एक WhatsApp group बनता है, ठीक है? उसमें जितने सारे लोग होते हैं WhatsApp. So it starts off with being a functional WhatsApp group. But these groups last for life. जो friendships वहाँ पे होती है ना, that you form, they kind of last for a very, very long time. So prepare yourself not just to kind of see the sights and sounds of Germany, but also make some really good friends here, Hitali. All right, so we've all got
2: Thank
1: our fingers
2: so much,
1: crossed
2: sir.
1: For you, and jab ye draw hoga, I hope that aapka naam is draw mein se nikle, but till then keep your fingers, toes, toenails and all the retail stuff that you do all crossed. Okay,
2: thank you so much, I'm so grateful. Thank you sir.
1: Take care. That's Hitali, hamari aaj ki winner hai. Aap bhi is mauke ko jaane na de. This is an amazing opportunity for you to head out to Germany with team Big. Kya message karna hai Hitali ki tarah aapko message karna hai? Big check in space dekar apna naam. Just type out big check in space your name and WhatsApp that to 054-309-1062.
0: Participate in the big check in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, travel partner AFC Holidays, exclusively on Big 106.2.
4: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं, देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
0: बनाएंगे. अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू, 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं, एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
5: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
6: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: School's starting soon and we need a car.
8: Books, uniforms, everything.
7: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
8: And what if we need it for a short while?
7: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
9: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
10: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM. टिकट्स फ्रॉम 199 dirhams, इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
6: The Big Breakfast, brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: Good morning, it's 9:50. On the clock and let's take a look सबसे पहले at E11 आज सुबह से काफी ज्यादा congestion यहाँ पर अलनादा interchange 1 all the way till देरा अभी भी आपको मिलेगी 7 से 10 मिनट की देर and there's 311 पर usual traffic nothing major and this is as you get out of city center Zaya heading south going towards Dubai from Sharjah still a bit of congestion at industrial area 6 S112 S116 पर in Sharjah industrial and E11 पर at the border of Ajman and Sharjah you'll find a bit of congestion heading towards E88 going south. Then there's also a town street a bit congested and so is 44. यहाँ पे 3 से 4 मिनट की देर मिलेगी अलखेल रोड पर going towards Business Bay from D3.
11: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग 10:06।

0: The Beat of Bollywood.
1: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED-247.
2: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: मॉर्निंग 10:11 ऑन दिस वेडनेसडे की सुबह। 38 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट जस्ट 40%, विंड्स ब्लोइंग एट 13 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 39, लोज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट alras.me। Big 106.2। Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सोनल दिनुषा नाम नहीं सुना आपने तो आप सुन लोगे बिकॉज ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री एट द एज ऑफ 25 अगेंस्ट इंडिया इन द सेकंड टेस्ट मैच.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: हिस्ट्री कैसे यू आस्क, बिकॉज ही हैज स्कोर्ड अ स्कोर ऑफ अबव 80 in his first three innings against India. He scored a century in the first test match, then 80 plus in the second innings, and then he scored a century in the Sri Lankan first innings as well. 103 banaya unhone. So he is one batsman that the Indian bowler have no answer against, it'd be safe to say, right? And so yeah, इससे पहले ये करने वाले प्लेयर थे ज़हीर अब्बास. ज़हीर अब्बास के बाद इट इज सोनल दिनुषा. सो बिग अचीवमेंट एट द यंग एज ऑफ 25, राइट. स्कोर्स क्या है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच 83 for 2. श्रीलंका लुकिंग क्वाइट स्टेडी आफ्टर इंडिया आस्क्ड देम टू फॉलो ऑन. दे आर स्टिल ट्रेलिंग बाय 130 रन्स ऑन डे 4 ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच. बट टॉकिंग अबाउट स्कूलिंग द इंडियन बोलर्स, बैक टू स्कूल से हम बस कुछ ही दिन दूर हैं. एंड टॉकिंग अबाउट बैक टू स्कूल, देर आर सम फैबुलस ऑफर्स ऑल्सो that you can look forward to. Kuch badhiya wale offers bhi aapke liye hain, and that's coming up in just a while. Keep it locked, this is Big 106.2 the Beat of Bollywood.
1: Big 106.2.

0: It's a Wednesday. अब जानते हैं हमारे इंस्टा पेज पे हर वेंसडे को क्या होता है. The Big Filmy Wednesday is now live.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: सवाल एक और टिकट दो. बहुत ना इंसाफी नहीं, बहुत ही अच्छी इंसाफी है ये. यू कैन जस्ट हेड आउट द आंसर. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑफ कोर्स रक्षाबंधन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड एक राखी से जुड़ा हुआ सवाल, बहुत ही आसान वाला, समथिंग टू डू विद बॉलीवुड, सगे भाई बहन, सगे बींग द कीवर्ड आउट देयर. सो हेड आउट टू आवर इंस्टा पेज. अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या कर रहे हो यार, अब कर लो. चलो माफ किया आपको. 106.2 बिग एफ एम, दैट्स आर हैंडल, 106.2 बिग एफ एम. फॉलो अस, फायदा आप ही का है, बहुत सारे प्राइजेस वहां पर जीतने का मौका आपके पास. ऑन दैट नोट, ऑन दैट विनिंग नोट, आई एम गोना बी टेकिंग योर लीव एंड आई सी यू टुमारो शार्प एट 7 to 11 ऑन अ वीक डे. डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग इन द मॉर्निंग. इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. इन द मीनवाइल फॉलो मी ऑन सोशल्स. आई एम सिड सेठ, SIDSETH. टिल टुमारो, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वेंसडे. बाय बाय.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: डाइजेस्टन कूल टिप्स विद डाबर पुदीन हरा।
3: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हैवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा, योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ।
2: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th August, शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। Zikr brings India's master storyteller, Amandeep Khayal, with his soul-stirring show, Dhak Dhak, for the very first time in Dubai. Ehsaas, chai ki garmahat, aur dil ko chhoo lene wale kisse at GEMS Al Barsha National School. Doors open at 4:30 p.m. Show begins at 5:30 p.m. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
3: So, पहले आप बताइए सबको कि आपको कॉल कैसे आया है, सबसे पहला स्टेप क्या किया था?
4: मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करा, बिग चेक इन स्पेस माय नेम एंड आई गॉट अ कॉल।
3: वेरी सिंपल, देखा कितना सीधा सच्चा सिंपल सा एंट्री बेस है। ओके, नाउ सेकंड बेस, आपको शॉर्टलिस्ट होना है, आपको गेस करना है कि ये जो डायलॉग मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि वैसे ही ट्रिप का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में ये फिल्म, ये कैरेक्टर और ये डायलॉग आ ही जाता है। ये डायलॉग जो है कौन सी फिल्म का, यू हैव टू गेस। ओके, यू रेडी भूमिका?
4: यस, ओके, डन।
3: ओके,
5: मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
3: Which film is this?
4: ये जवानी है दीवानी।
3: ये जवानी, ओ यार भाई, तो आपने एक सेकंड नहीं लगाया गैस करने में। Okay, on a scale of 1 to 100, how excited are you?
4: More than 100, can I say?
3: Yeah. Okay.
4: Thank you.
3: So just like Bhumika, आपको करना क्या है, अगर आपको जाना है हमारे साथ जर्मनी बिग चेक इन में, आपको टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062।
0: Share your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: बात है
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है
0: बड़ा
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो
1: दूर हुआ तो क्या दिल में तुम्हारा नाम है जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती
0: ओके दैट्स इट
2: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Experience an unforgettable evening as Gaggan Vidgal brings you Jadoo, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
5: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 054-309-1062.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, song of the hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:05। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 3 सितंबर को पहली फिल्म रिलीज होने वाली है, मतलब सितंबर की पहली फिल्म रिलीज होने वाली है ऑन नेटफ्लिक्स. नाम है उसका गांधारी, स्टारिंग तापसी पन्नू एंड अशवाक सिंह इन द मेन लीड. तापसी की ऑलरेडी बहुत सारी क्राइम थ्रिलर्स हैं लेकिन दिस वन लुक्स डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स लगती हैं क्योंकि इसमें गांधारी द रेफरेंस फ्रॉम द इंडियन माइथोलॉजिकल महाभारत से लिया गया है, रेफरेंस वहाँ से है. लेकिन ये कहानी एक क्राइम पर जहाँ पर तापसी पन्नू के जो कैरेक्टर हैं उनकी बेटी की किडनैपिंग होती है. देयर इज एक्शन, देयर इज थ्रिल. 3 सितंबर इट इज. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन बिकॉज ये ट्रेलर जो देखा है मैंने मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यार. वेल 3 सितंबर इट इज, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी. रिव्यू आपको मैं यहाँ पर दे दूंगी. टिल देन यू कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: आजा आजा, मैं बोल रही हूँ यार, इफ यू लव ग्रेट सिनेमा, दीज आइकॉनिक लिरिक्स.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड इफ यू लव ग्रेट सिनेमा, आई टोल्ड यू आइकॉनिक लिरिक्स पसंद है आपको. ऑल यू गॉट टू डू इज क्लियर कैलेंडर फॉर 28th ऑफ अगस्त. क्या मिलने वाला है बताती हूँ.

लिखते हैं यार, जावेद अख्तर साहब, ओ माय गॉड क्या लिरिक्स लिखते हैं यार. और ऐसे ही लिरिक्स, ऐसे ही जावेद अख्तर की शायरों शायरी आपको पसंद है. 28th of August, गगन मुदगल इज कमिंग टू द जंक्शन दुबई विद जादू, द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर. इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल नाइट. शो शुरू होने वाला है 8:15 PM से, सो ग्रैब योर टिकट्स राइट नाउ. डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगी, इससे पहले सबकी सब सोल्ड आउट हो जाए. एंड अगर आपको ये टिकट्स जीतनी है, ऑल यू गॉट टू डू इज just keep it locked to Big 106.2. Oh, yeah.

0: 92.2 The Beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Roisin Hasty. Tributes have been coming in following the death of Dolly Parton at the age of 80. US media is reporting the country music legend died after a brief battle with cancer. Elton John described her as a giant of an artist. Paul McCartney said she was unrivaled in the world of country music. The head of Instagram, Adam Mosseri, has testified in a high-profile court case against the parent company Meta in California. 29 US states accuse Meta of designing its products to be addictive to young users and then hiding the research. Mr. Mosseri denied encouraging employees to keep negative information away from the public. The head of the International Monetary Fund has said the global economy has weathered the energy shock caused by the US-Israel war on Iran better than feared. Kristalina Georgieva said the impact of the war had been asymmetric, predicated on how dependent countries were on oil from the Gulf. China and India have agreed to continue their dialogue towards a mutually acceptable settlement on their border dispute. This follows 2 days of talks in Beijing. Both sides described the talks as comprehensive and candid. Police in Washington have arrested a man carrying a guillotine in the back of his pickup truck near the US Supreme Court. The suspect had driven from California. BBC News.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Big 106.2.
2: जो भी सॉरी तानिया हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है वो मेरे लिए चिल्लाए सीटी बजाए दैट्स नॉट माय थिंग
0: शी इज बबली ब्रिंगिंग फ्रेश एनर्जी एंड अ होल लॉट ऑफ फ्लेवर द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
3: Big 106.2 में मैं हूं अवनी आपके साथ एंड इन दिस आवर आप जीत सकते हो हमारे साथ जर्मनी जाना बिग चेक इन के साथ
4: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स एसोसिएट स्पॉन्सर्स फोर्ड एंड शराफ डीजी ट्रैवल पार्टनर एएफसी हॉलीडेज एक्सक्लूसिवली ऑन बिग 106.2
3: अब चेक इन पे जाने के लिए करना क्या है ऑल यू गॉट टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062 के व्हाट्सएप नंबर पर मैं करूंगी आपको कॉल हम खेलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम एंड देन आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा फॉर द बिग चेक इन दिस आवर स्टे ट्यून्ड

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:07
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड लेके जाने वाली हूँ आपको मेरे साथ इस फेरी टेल वर्ल्ड जर्मनी की बात कर रहे हैं द बिग चेक इन के साथ.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: देखो यार, खुद को मैं पैसेंजर प्रिंसेस तो कहती हूँ, लेकिन बचपन से लेके अब तक ना मैं उसी फेरीटेल वर्ल्ड में अटक चुकी हूँ. एंड इफ यू आर समबडी लाइक मी जो उस फेरीटेल वर्ल्ड कैसल्स में अटक चुके हो, लेट मी जस्ट टेल यू, गिव यू अ लिटिल हिंट. जर्मनी हैज ओवर 20,000 कैसल्स, बहुत पुराने, सेंचुरीज ओल्ड, एंड इतने सुंदर लगते हैं कि भाई डायरेक्टली किसी एनिमेटेड प्रिंसेस फिल्म से बाहर रियलिटी में लाके रख दिए गए हैं. वेल, ऑल यू गॉट टू एक्सपीरियंस दिस फेरीटेल वर्ल्ड, type big check in space your name and send it to 0543091062 WhatsApp number portal. Then keep it locked to big 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। हाई स्पीड ऑटोबान, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: चाहे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, इट्स 49% एज ऑफ नाउ, बट टेम्परेचर बढ़ चुका है 41 degrees।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2।

0: ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 mein hoon Avni aapke saath and this is the time for Big Check In. आज हमारे साथ हैं हेलो
2: अम्मी
1: हाय पार्थ कैसे हो
2: मैं ठीक हूँ आप कैसे हो
1: बहुत बढ़िया वेल बिग चेक इन के लिए रेडी हो जर्मनी जाने के लिए
2: यस
1: ठीक है तो हम देखते हैं कि आपको ये वाला सॉन्ग जो है अगर आप जर्मनी में जो जाओगे कैसल्स में एकदम प्रिंस क्वीन किंग ट्रीटमेंट मिलेगा आपको कैसा फील होगा लेट मी जस्ट नो कि ये गाना जो है कौन सी फिल्म का है
3: कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के है
1: एकदम यही फील आएगी ना जर्मनी जाके है ना उन कैसल्स में ओके यस पार्थ व्हाट फिल्म इज दिस कैसे पहुंच गए करेक्ट आंसर और आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है फॉर द बिग चेक इन अगर इसके बाद आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा आप हमारे साथ चलेंगे आपको कॉल मिल जाएगा लेकिन फॉर दिस बेस दिस स्टेज आपका नाम जो है शॉर्टलिस्ट हो चुका है
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Well, अगर आपको भी पार्थ की तरह कॉल पर कॉन्टेस्ट खेलना है बिग चेक इन के लिए नाम शॉर्टलिस्ट करवाना है पार्थ क्या क्या करना होगा क्या किया था एग्जैक्टली आपने
2: मैंने अपना नाम रजिस्टर किया था बिग एफएम नंबर पे और आपका कॉल आ गया थैंक यू सो मच
1: इट्स सो सिंपल थैंक यू सो मच All you gotta do to register yourself, type big check-in, you space your name and send it to 0543091062.

0: The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: Experience an unforgettable evening as Gaggan with Gull brings you Jadoo, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: फेयरली मैनेजेबल ट्रैफिक लग रहा है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स शारजा, आपको हैवियर ट्रैफिक मिलेगा ऑन E11 एंड E311, पर्टिकुलरली अराउंड अलकसीज एंड अलनादा. शेख जायद रोड कंपैरेटिवली स्मूथ है ट्रैफिक. अगर आप कहीं और फंसे हो, डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: व्हाट वी कॉल टू आवर पेट्स, हमारे जिगर का टुकड़ा नहीं।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ। एंड रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी ऑन स्क्रीन्स एंड थिएटर्स, ओ माय डॉग जिसका नाम था, लेकिन वो यूएई में रिलीज नहीं हुई थी, बट विद अ मैसिव सक्सेस बैक इन इंडिया इट्स रिलीजिंग ऑन सितंबर 4th। पंकज त्रिपाठी हैं इनमें।
2: आपने ध्यान दिया है आपके एरिया में कहीं कोई कुत्ता नहीं है?
3: एक्सीडेंट हुआ होगा, हो भी सकता है। किडनैपिंग, रैंसम,
4: पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है।
3: वेब सीरीज बहुत देखते हैं क्या?
0: वेल, वन डॉग इज मिसिंग। डॉग का नाम है मोमो। एंड सिर्फ पंकज त्रिपाठी नहीं, पूरी की पूरी कॉलोनी जो है ढूंढने लग जाती है उस डॉग को। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ ये एक डॉग की कहानी है, नोप, इट हैज लाइक कास्टेड 250 डॉग्स। व्हाट अ क्यूट फिल्म, जितने मुझे रिव्यू सुनने को मिले हैं मैंने अभी तक देखी नहीं है। 4th September इट्स रिलीजिंग इन UAE स्क्रीन्स। आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर टाइप, आई लव ओ माई डॉग। 0543091062 पर आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। 4th September रिव्यू हम दोनों साथ में करेंगे। टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:07। Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
1: देखते हैं आप कितने बड़े फूडी हो। इना सेगमेंट खाओ पियो ऐश करो। आज लंच में क्या लेकर आए हो वहां से हम शुरू करेंगे और कौन सी डिश पर आके आप अटकते हो। वेल, क्योंकि मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, अगर आप मुझसे खाने की बात करो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है। अच्छा खाना जब बहुत भूख लगी हो। और क्या ही बोलोगे यार। इफ यू थिंक यू आर अ बिगर एंड अ बेटर फूडी देन मी, ऑल यू आर डू इज प्ले दिस गेम विद मी। कॉल करो मुझे 800-1062 टोल फ्री नंबर पर। रिपीट कर देती हूँ 800-1062 एंड विल सी हु इज अ बेटर फूडी, यू और मी। दिस इज द बिग मिक्स। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 mein hu Avni and this is Khao Piyo Aish Karo. Hamare sath aaj kaun hai?
2: Hi.
1: Kya naam hai aapka?
2: Waleed Ahmed.
1: Okay Waleed, aapne aaj lunch mein kya khaya hai?
2: Lunch mein abhi jaake khaunga ghar mein.
1: Okay, bataye kya banaya?
2: Abhi nahi malum.
1: Okay, aapki bhookh thodi aur badha dete hain. अच्छा, अगर आपको खाने में दिया जाए लौकी या आलू की सब्जी, दोनों में से क्या चूज करोगे?
2: लौकी, बिकॉज़ माय फादर यूज्ड टू ईट इट.
1: ओके, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर था. ओके, बाय द वे, लौकी या फिर बैंगन?
2: बहुत
1: नहीं नहीं एक चूज करना है ना.
2: लौकी
1: लौकी लौकी या फिर राजमा चावल?
2: राजमा चावल.
1: राजमा चावल या कड़ी चावल?
2: राजमा चावल.
1: राजमा चावल या फिर छोले चावल?
2: छोले छोले चावल.
1: ओके, छोले चावल या फिर कटहल की सब्जी?
2: छोले चावल.
1: ओके, वही सो ये टक गई है आपकी. ओके, छोले चावल या फिर भिंडी?
2: भिंडी भिंडी.
1: ओके, भिंडी चेंज हो गया. भिंडी या फिर पुलाव?
2: पुलाव पुलाव
1: पुलाव. पुलाव या मिक्स वेज?
2: पुलाव.
1: पुलाव या सैंडविच?
2: पुलाव.
1: पुलाव या फिर कोई और कड़ी वाली सब्जी?
2: पुलाव
1: पुलाव पुलाव. अगर आपको आज पुलाव ना मिले घर पे जाके तो मुझे बुरा लगेगा. वेल घिया से शुरू
2: बुरा लगेगा
1: क्योंकि यार आपने इतनी बार पुलाव चूज किया और पुलाव सच अ लंच आइटम ना, आपको पुलाव मिलना चाहिए आज. व्हाट डू यू से?
2: यस आई थिंक सो.
1: ओके, वैसे आपका फेवरेट फूड क्या है?
2: चिकन बिरयानी जो अम्मी बनाती है.
1: ओहो, वैसे भी जो अम्मी जो भी बनाती है ना वो बेस्ट ही होता है. नहीं,
2: ऑफ कोर्स.
1: अगर आपको खेलना है मेरे साथ खाओ पियो ऐश करो, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल करो 800-1062. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहता है।
1: जो भी दिल पेरेंट्स का चाह रहा था वो पूरा होने वाला है। 31 अगस्त स्कूल रीओपन हो रहे हैं।
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ and get school ready with self drive. You can rent a car starting from 1099 dirham per month, flat rate for the year, zero penalty on early returns. So basically, अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप टेंशन फ्री तो हो ही, लेकिन विद सेल्फ ड्राइव डबल टेंशन फ्री हो जाओगे. You keep listening to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:07
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: You know what the good part about weather is कि बाहर जाके ना अब बहुत humid नहीं लगता है because it's on 51%, लेकिन गर्मी जरूर लगती है, it's 40 degrees out there.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: लतिका झा का ट्रैक सॉन्ग का नाम था गहराइयां। व्हाट अ म्यूजिक। लेकिन एक और म्यूजिक है जो मैं आपको सुनाती हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा अरे हम तो वापस से नॉस्टैल्जिया मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं यार।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 में मैं हूं अवनी आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूं 25 इयर्स ऑफ हैरी पॉटर हो गए हैं। पॉटर हेड्स, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है एंड आई एम वन ऑफ देम, सो आई एम रियली रियली रियली एक्साइटेड। हैरी पॉटर द फिलोसोफर्स स्टोन सिनेमाज में रिलीज हो रही है कल, यानी कि 27th ऑफ ऑगस्ट। द म्यूजिक आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओह गॉड, इट्स सो मैजिकल, सो मैजिकल। यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ कि बहुत लोगों ने ना हैरी पॉटर इंग्लिश में देखी है, बहुत लोगों ने हिंदी में देखी है, लेकिन दोनों का अपना अपना मजा है यार।
2: एक्सपेक्टो पैट्रोनम, पितृदेव संरक्षणम।
0: आपने किसमें देखा है बताओ मुझे 0543091062 पर मैसेज करके, इट्स अ व्हाट्सएप नंबर। एंड देखने जाओगे इस बार फिर से कि नहीं, ये भी जरूर बताना, बिकॉज आई एम नॉट गोना मिस इट आउट। ऑल्सो क्योंकि उसकी इतनी मर्चेंडाइज निकल चुकी है यार, अपने वो वाले दोस्त को जरूर लेके जाना जिसका जो बेड स्पेस है ना वो उसका नहीं, हैरी पॉटर का बेड स्पेस लगता है। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड अगर आपको भी डीजे वीजे क्लब जाना इस बार पसंद नहीं है, इस वीकेंड नहीं जाना है, आपको एक स्लो इवनिंग चाहिए, खुद को अनवाइंड करना है, दिस इज फॉर यू. ऑगस्ट 29th, जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. उनके शो का नाम है धक धक. क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऑफकोर्स शानदार पोइट्री, soul stirring stories, warm chai at Gems Al Barsha National School. Doors open at 4:30 PM. Show shuru hoga 5:30 PM. Tickets available hai 199 dirham se exclusively on district, including high tea and a free parking. And agar aapko tickets jeetni hai, all you gotta do is keep it locked to Big 106.2. 29th August, yaad hai na?
2: Yaar diya, shaam ne to kithe kithe naal ho raha. Vekhiyam photo aave kar diya.
1: Agar aapko bhi hona hai Mandeep Khayal ke saath, all you gotta do is keep it locked to Big 106.2. Sakhiya 2.0 coming after this track.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
2: Don't miss out with Big Ticket.
3: 15 million dirham grand prize.
2: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
3: Plus 5 consolation prizes.
2: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Missed your morning buzz? Yes or no?
5: Congratulations, sabse pehle.
6: Thank you so much. I'm so excited for this.
5: Sher ne khoon chak liya hai, so ab Ricky ko koi nahi rok sakta hai. Germany, aap aur main saath milkar na, मन में तो जर्मनी ही पहुंच जाएंगे. चले जर्मनी.
6: एब्सोल्युटली.
5: ओके, सो आप और मैं, वी आर रनिंग थ्रू ग्रीन बवेरियन मेडोज विद विंड इन योर हेयर. या रनिंग थ्रू ग्रीन बवेरियन मेडोज विद विंड इन द हेयर. और जो डायलॉग सुनने को मिलता है ये वाला.
7: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
5: अब आपको बताना है, इससे मुश्किल सवाल जिंदगी में कभी नहीं किसी ने पूछा होगा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अभी अभी पैन यूरोप टूर से वापस आए रिकी. इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, देन एल्प्स चुल्लू भर बर्फ बताओ.
6: दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे.
5: एब्सोल्युटली करेक्ट. Like I said, beginner's luck. It is, not going to be so simple in the days to come. But Ricky, congratulations. Your name goes into the draw and you're one step closer to winning that solo trip to Germany.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: अकेल रोड पर आपको थोड़ा सा कंजेशन मिल सकता है अराउंड अलबर्शा साउथ एंड द उमसुकीम इंटरचेंज. E311, E611 पर भी आपको काफ़ी हैवी कंजेशन मिलेगा. इफ़ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स बिजनेस बे, अलबर्शा या फिर JVC या JLT, एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ेगा साथ में. अगर कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, डू लेट मी नो 800-1062 पर कॉल करके.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: of the hour was brought to you by insurancemarket.ae with 30,000 Google reviews and a 4.8 star rating. Build in UAE, trusted across UAE.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
0: आप मुझे भी डीएम कर सकते हो अवनी यार के पेज पर AVNIY AAA R ऑल सितंबर रिलीजेस उसके रिव्यूज आपको वहां मिल जाएंगे. बाकी मिलती हूँ कल फिर से 1 से 5 ओनली ऑन द बिग मिक्स. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फ्रेंड्स अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: 1+1

0: 20,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह बिग थ्रिल मानसी एंड व्हाइल यू आर हेडिंग होम एवरी सिंगल इवनिंग जब आप ट्रैफिक जाम में होते हैं वी जैम हियर विद द कारियोकी द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर बाथरूम सिंगर्स मतलब अपना टैलेंट बाथरूम तक मत रखो बाहर लेकर आओ आवाज आपकी कॉन्सर्ट आपका ऑडियंस मेरी आई बिलीव अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं गाना आए या ना आए इज नॉट अ प्रॉब्लम हमें बस गाना है दिल खोल के दिस इज इट एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल गाना इफ यूर फैन ऑफ सलमान खान ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए इवन इफ यूर फैन ऑफ एस पी सर

बड़ा पॉपुलर गाना है 90s का, सलमान खान, संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित. अब इससे ज्यादा हिंट्स नहीं, दिस इज वेरी इजी. इफ यू गेस द गाना, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. वी आर कारियोकिंग राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल, कीपिंग यू कंपनी. अमानसी

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
3: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.ae.
4: Experience an unforgettable evening as Gagan Mudgal brings you Jadoo, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
5: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Extremely slow moving, फिलहाल 41 minute delay दिखा रहा है अगर आप शेख जायद पे हैं, but ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या. Traffic also patchy at the moment if you're taking Sheikh Mohammed bin Zayed Motive to Muhesna. There's also slow moving traffic if you are around Al Fahidi, that is Gold Souk के पास अगर आप हैं तो वहां भी आपको traffic मिलने वाला है. 12 से 15 minute का delay फिलहाल on the Hesse Street, especially if you're going towards Sports City. Anything else you'd like to report, मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर.
7: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.
7: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill and Mansi, and every single evening, pan se shake a beach while you're stuck in peak traffic jam, we jam here with the karaoke. Aaj ka gana bahut hi special hai. If you're a fan of Salman Khan from the 90s, and I have to say, Salman Khan from the 90s was a total vibe, hai na Daud?
2: उन्हीं से तो इंस्पायर्ड है पूरे।
1: अच्छा, तो आप सिंगल हैं अभी भी? मुझे लगा वो वाली इंस्पिरेशन ले लिया आपने। पता है उस दिन मुझे एक डीएम आया, आपके और सलमान के बीच में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला मुझे पता है हम दोनों सिंगल हैं।
2: नहीं, उनसे बॉडी बिल्डिंग की इंस्पिरेशन है।
1: अच्छा, फिलहाल आपका वेंसडे कैसा रहा?
2: सो फार सो गुड।
1: खाई ओनम सद्या आपके ऑफिस में था सेलिब्रेशन?
2: नहीं, ऑफिस ही नहीं है, अभी तो हंट चालू है।
1: अच्छा, जॉब ढूंढ रहे हैं आप? सो विच डिपार्टमेंट?
2: आईटी।
1: IT. So if anyone is looking for a IT guy who can also sing, by the way, Daud is your man. So Daud, ab to solid performance pressure hai. Gana, I'm sure aapne pehchan liya hai. Awaaz aapki kamaal lag rahi hai. Salman ke aap fan ho, to aap Daud ki awaaz mein sunte hain.
0: Karaoke.
1: All right.
2: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
1: वाह, रिज्यूमे में लिखा आपने कि आप गाना गाते हो?
2: नहीं, ये तो आपके पास है ना कंपटीशन।
1: हाँ, मैं लिखना भी मत। देखो, गाना तो जो है वो आप पता नहीं कौन से सुर पे ले गए थे, बट गाना बहुत कमाल है। आई थिंक हर किसी की कोई ना कोई मेमोरी इस गाने के साथ है। याद है जब ये मूवी आई थी, किसके लिए सुनते थे आप बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम?
2: पहला प्यार हुआ तो तब बहुत सुना था।
1: आई यू फ्रॉम हैदराबाद?
2: हाँ।
1: देखा, मैं समझ गई, जब ये पहला प्यार वाला जो डिक्शन आया ना, आई लव हैदराबादी एज अ लैंग्वेज। मुझसे कुछ अच्छा बोलो ना, रोमांटिक। आज मैं बहुत सुंदर भी लग रही हूँ हैदराबादी में।
2: नहीं, लेकिन इतना बोल सकते, किराक दिख रहे हैं आप।
1: क्या, क्रैक दिख रही हूँ?
2: किराक।
1: किराक,
2: जबरदस्त।
1: आय हाय, थैंक यू सो मच। बैंगन बाता नको करो, बीवी सुन लेगी। Thank you so much, Daud, and wishing you all the very best. You have a great energy and isi vibe ke saath raho. Bahut jaldi next time when you call me now, within a week, I'm praying aapko job mil jayegi.
2: Inshallah.
1: Have a great evening. Bye.
2: Bye-bye.
1: This is what we do while you're heading home. We sing, mahol banate hain. Agar aap bhi gaana gaane ka shauk rakhte hain, give me a call. Logo ko shauk nahi dena hai, thoda bahut gaana hai. 800-1062 par.
0: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसकी पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: We're karaokeing here. हम ये हर शाम करते हैं गाड़ी में ही karaoke. फिलहाल I think I have someone who is a very very professional singer. आदिल के हेलो से मुझे लगा कि ये बस बहुत कमाल गाने वाले हैं. Hi आदिल.
2: Hello.
1: ये देखो hello. So are you a singer?
2: चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ. आई थिंक
1: सो डू यू सिंग लाइक किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि आदिल तुम्हारी आवाज में जादू है मेरा दिल ले लिया.
2: आई थिंक यू नीड टू फिगर दैट आउट.
1: यू स्केयरिंग मी नाउ.
2: आई एम नॉट डेफिनेटली.
1: आई थिंक ही विल सिंग वेल. चलो आदिल की आवाज में सुनते हैं
0: karaoke.
1: ऑलराइट आदिल.
2: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम.

0: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
1: मैंने कहा था, देखो लाइफ में बंदे गलत जज कर सकती हूँ व्हेन इट कम्स टू माय रिलेशनशिप, बट आवाज सुन के मैं बता सकती हूँ कि बंदा गाना कैसा गाएगा। फैंटास्टिक आदिल, मुझे पता ही था कि आप अच्छा गाओगे। सो डू यू डू दिस ऑफन, डू यू सिंग?
2: वेल करियर हैपेंड टू मी, अदरवाइज आई यूज्ड टू स्टे सिंगर।
1: ओह, यू वांटेड टू बी अ सिंगर?
2: यस।
1: ओह माय गॉड, देन व्हाई डिड यू लीव सिंगिंग एंड व्हाट इज योर करियर एट द मोमेंट?
2: आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड yeah, that's what happened to me.
1: I am a slave of my passion and I really like people who are, but I hope someday you start singing again.
2: Oh yes, I hope someday Three Idiots happen to me. Oh yes, then I'll do it.
1: You're fantastic at it.
2: Thank you so much.
1: तो लड़कियां तो ऐसी इंप्रेस हो जाती होंगी बस दो लाइन आदिल ने गा दी तो।
2: Well, जब भी कभी भी कहीं पे पार्टी, होम पार्टी, हाउस पार्टी होती है तो I have to sing there. So yeah.
1: So number number तो बहुत मांगती होंगी ना आपसे?
2: अब नंबर की तो क्या, उसका क्या करना है?
1: देते हो नहीं देते हो?
2: नहीं देता हूँ।
1: क्यों?
2: I am married and I have.
1: तो ये पहले बता दिया करूँ ना, ये इतनी बड़ी मतलब why do you have to just build the story around where there is no story?
2: No, there is a story. I have a great story. I have a son. He's 3 years old and my wife is pregnant with twin babies right now.
1: Wow, congratulations! So was she the first girl जिसके लिए आपने गाना गाया था?
2: Yes, always.
1: How sweet. And I really wish that you start singing again because you're fantastic at it. Congratulations for being a daddy once again and have a great evening.
2: Thank you so much.
1: Bye.
2: You too, and have a
1: bye.
2: Take it. Bye.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: Bollywood.

दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: 1 + 1 = 3.
2: That's not right.
1: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
2: Really? And these 4 designs to choose from?
1: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
2: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: InsurersMarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
4: Don't miss out with Big Ticket.
5: 15 million dirham grand prize.
4: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
5: Plus 5 consolation prizes.
4: Buy now at BigTicket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. T&Cs apply.
0: Missed your morning buzz?
7: Utha le re baba.
0: Yes or no?
8: Congratulations sabse pehle.
9: Thank you so much. I'm so excited for this.
8: Sher ne khoon chak liya hai, so ab Ricky ko koi nahi rok सकता है जर्मनी. आप और मैं साथ मिलकर ना मन में तो जर्मनी ही पहुंच जाएंगे. चले जर्मनी.
9: एब्सोल्युटली.
8: ओके. सो आप और मैं अभी रनिंग थ्रू ग्रीन बवेरियन मेडोज विद विंड इन योर हेयर. या रनिंग थ्रू ग्रीन बवेरियन मेडोज विद विंड इन द हेयर. और जो डायलॉग सुनने को मिलता है वो ये वाला.
10: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
8: अब आपको बताना है इससे मुश्किल सवाल जिंदगी में कभी नहीं किसी ने पूछा होगा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अभी अभी पैन यूरोप टूर से वापस आए रिकी. इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर देन एल्प्स का चुल्लू भर बर्फ बताओ.
9: दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे.
8: एब्सोल्युटली करेक्ट. Like I said, beginner's luck. It is, not going to be so simple in the days to come. But Ricky, congratulations. Your name goes into the draw and you're one step closer to winning that solo trip to Germany.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
13: It's still 38 degrees, low jayega around 34, pretty humid though, filhal humidity 61% par.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
14: Main gunda, qatil, jail se bhaga hua mujrim. Sharafat ki kitab mein mujhe khalnayak kehte hain.
0: Big 106.2.

0: Big Thrill with Nancy on B106.2. The beat of Alwar.
1: छुट्टियां अपने स्कूल शुरू, इट्स बैक टू स्कूल सीजन एंड शो यू प्रेप अप. वैसे अगर आप गाड़ी रेंट करना चाहते हैं फॉर बैक टू स्कूल सीजन, देन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 द मंथ. फ्लैट रेट है 40, सो डेफिनेटली ऑन लर्न, डेफिनेटली चेक आउट
0: सेफ.ie पर. 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ आवर ब्रॉट टू यू बाय सेफ.ie.

0: big thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi, and yahan par was your chance to win couple tickets to go and watch Amandeep Khayal perform live. Zikra aapke liye lekar aaye hain Amandeep Khayal for the very first time in Dubai. People who know him, I'm sure you already love him. And agar aap pehli baar unka naam sun rahe hain, follow him on Instagram, you will fall in love with his storytelling. And this is happening on the 29th of August, GEMS National School, Barsha mein. आप अपने टिकट्स जो हैं वो ले सकते हैं. दे आर अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट, प्राइज्ड एट 199 दिरहम्स, व्हिच इंक्लूड्स योर हाई टी एंड योर फ्री पार्किंग. इनफैक्ट इफ यू हेड टू आवर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफएम, वहां भी फ्री टिकट्स जीतने का मौका आपके पास है. राइट नाउ थोड़े से घबराए हुए से विनेश.
2: नहीं एक्चुअली हाय गुड इवनिंग मानसी.
1: हाँ जी,
2: मैं घबरा इसलिए गया क्योंकि मैंने आवाज तो पहचान ली, क्योंकि आवाज पहचान के, लेकिन मुझे ये मिस हो गया कि वो सॉन्ग कौन सा था.
1: कोई बात नहीं, मैंने आवाज ही पहचानने को कहा था. आज कैसा रहा आपका दिन विनेश? आप बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है, यू आर ऑल ओवर द प्लेस टुडे.
2: दिन तो काफी बिजी रहा क्योंकि अभी वीकेंड आने वाला है, उससे पहले काम काफी ज्यादा है, तो वो काम भी खत्म करना है. कि काम अगर बच गया तो वीकेंड के बाद भी मुझे ही करना है, तो क्यों ना उसको पहले खत्म कर लिया जाए.
1: बहुत बढ़िया काम है ये, आपके वीकेंड पे काम ना हो इससे पहले कि डबल काम कर लो, सबका यही हाल है. क्या करते हैं आप विनेश?
2: मैं एविएशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ. आई वर्क फॉर एन एयरलाइन.
1: आर यू द पायलट और द कैबिन क्रू?
2: मतलब हाँ, ग्राउंड क्रू हूँ.
1: वेरी नाइस. अब काम के बारे में नहीं सोचते हैं, अब हम वीकेंड के बारे में सोचते हैं. सो आर यू रोमांटिक? Are you someone who loves old school romance?
2: Well, मैं romantic हूँ और अपनी wife को जो है मैंने पहली मुलाकात में ही जो है एक song dedicated कर दिया था. तुम हो तो
1: ओए होए गाता है दिल. अरे rock on का गाना.
2: तुम नहीं तो गीत कहाँ, ये मैंने उनको पहली मुलाकात में dedicate कर दिया था.
1: आप romantic हो, लेकर जाते हो गुलाब गुलाब ऐसे हफ्ते में एक आध बारी?
2: हफ्ते में तो नहीं, लेकिन जब कभी ओकेशन होता है तो डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़ा सरप्राइज दूँ, क्योंकि उनको सरप्राइजेस पसंद हैं.
1: आई लव यू कितनी बार बोलते हो दिन में?
2: रोज तो नहीं, लेकिन कभी मन में आ जाता है तो एक व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ आई लव यू.
1: तो ये शादी के पहले इतना आई लव यू क्यों होता है, शादी के बाद आई लव यू कम क्यों हो जाता है जिंदगी में?
2: कम तो नहीं हो जाता, लेकिन हम साथ रहने लगते हैं तो शायद उतनी कमी महसूस नहीं होती जितना शादी से पहले महसूस होती, तो ज्यादा मैसेज कर देते हैं.
1: इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा स्पार्क आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं. आपको मैं दे रही हूँ दो इनवाइट्स, आप अपनी वाइफ के साथ आइएगा बिकॉज यू आर रोमांटिक. अमनदीप ख्याल आने वाले हैं परफॉर्मिंग लाइव इन दुबई ऑन द 29th. एंड ये जो गाना मैंने आपको सुनाया था, सिंगर कौन थे?
2: उनका नाम है सोनू निगम.
1: बिल्कुल सही जवाब. आप वहाँ आए, बहुत मजा आएगा. पोएट्री है, बढ़िया चाय है और बहुत सारी मोहब्बत है, तो मजा आएगा.
2: जी हाँ, मजा आया. फोन मिलाया और फोन लग गया, मतलब इसमें मुझे फोन लगने भी मजा आ गया, वहाँ जाके तो शायद और मजा आने वाला है.
1: मैं अपने सामने बुलवाऊंगी आई लव यू इस दिन, मुझे नहीं बीवी को. बीवी को ठीक है, चलो ग्रेट इवनिंग, बाय.
2: थैंक यू, बाय बाय. 106.2

काफी ज्यादा ऑफिशियल टाइप ऑफ ब्रेड मिलती है एंड उनका ब्रेड कल्चर इज प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को। आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड बिकॉज जहां ब्रेड वहां मैं। फिलहाल बहुत मस्ती होने वाली है। दे गॉट ब्यूटिफुल कासल्स एंड फॉर ऑल दोज इंटरेस्टेड ऑक्टोबर फेस्ट भी जर्मनी में ही होता है। बट यहाँ ट्रैवल करने के लिए विद टीम बिग फटाफट चेक इन करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है डू इट राइट अवे। बिग चेक इन योर फुल नेम 0543091062 पे व्हाट्सएप करना है।

में ही होता है, बट यहाँ ट्रैवल करने के लिए विद टीम बिग फटाफट चेक इन करना जरूरी है. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू इट राइट अवे. बिग चेक इन योर फुल नेम 0543091062 पे व्हाट्सएप करना है.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:07।
1: Bollywood.

0: month, flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
1: Yo, it's Alfred, you see? InsuranceMarket.ae. Car, health, home, life, travels and business too. 30,000 reviews, we got the crew. Claims commitment, we're by your side. 800 Alfred will be your guide. InsuranceMarket.ae.
2: Kuch kahaniyan sirf suni nahi jati, mehsoos ki jati hain. इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई. एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो बिगिंस एट 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
5: 37 degrees है, लो जाएगा around 34. Very humid today. फिलहाल humidity है 59% पर.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई। एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो?
1: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
3: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
4: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: Extremely slow moving if you are on the Sheikh Mohammed bin Zayed Marif to bumper situation hai filhal, 45 minutes ka delay, Festival City, Umrimul, Rashidiya all packed, there's heavy traffic, Dera se if you're going towards Gurer, bahut hi slow moving traffic near Dubai Gold Souk, Karama, Mankul, Udmetha side, there's heavy traffic still on Sheikh Zayed, not really bad, a 37 minute delay, it was around a 1 घंटा 5 मिनट का डिले पहले, बट अब 37 मिनट्स है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ट्रैफिक स्टिल ऑन अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया वाली रोड, एंड पैची ट्रैफिक इफ यू ऑन द हेस स्ट्रीट, स्पेशली इफ यू गोइंग टुवर्ड्स मोटर सिटी, आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा। एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
4: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

शाम ये राजो छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल 106.2 द बी

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill of Mansi, and of course it's time for the big check-in to Germany. I told you the last 5 minutes for you to register, but don't worry, you can still register. Throughout the day we give you a mauka and aapke paas abhi bahut time hai. रजिस्टर करने का, शॉर्टलिस्ट होने का, सो कीप सेंडिंग इन दोज व्हाट्सएप्स. बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062. इन फैक्ट मोर डिटेल्स ऑन आवर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफएम.
2: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर्स फोर्ड एंड शराफ डीजी. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: And now, हमारे randomizer ने ढूंढ निकाला है बरखा पंजाबी को. बरखा, I want to ask you, what is that DP? Is it AI generated या फिर वो कोई legit जगह है?
3: नहीं, वो like it's a proper place. It's in Vietnam.
1: It is stunning, by the way.
3: I know.
1: तो जिन्हें पता नहीं है, बरखा जो है पहाड़ों के ऊपर कहीं है. She's sitting on something that looks like a palm.
3: It's a beautiful place. It's called Sapa in Vietnam. So I think people who love mountains should definitely go there.
1: You seem like a traveler.
3: I am. I love to travel.
1: So have you been to Germany before?
3: नहीं. Unfortunately नहीं. But अभी हाँ, अभी जाऊंगी ना आपके साथ.
1: ये देखो, इसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना. मैं ऐसे डिल्यूजनल बोलूंगी भी नहीं, बिकॉज आई एम द सेम. जस्ट पुट इट आउट इन द यूनिवर्स एंड इट विल हैपन फॉर यू.
3: इट हैज टू हैपन विद बिग एफएम.
1: 100%. अभी मुझे अपना आता पता नहीं है कि मुझे ले जाने वाले हैं कि नहीं, बट बरखा के साथ मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ. फिर हम दोनों पहाड़ों पे जाके फोटोज खिंचाएंगे. फिलहाल बरखा, इट इज वेरी वेरी इजी. आई एम गोइंग टू प्ले यू अ डायलॉग. आपने सिंपली मुझे बताना है कि ये डायलॉग किस बॉलीवुड मूवी से था. कैसी है बॉलीवुड नॉलेज बरखा की?
3: वैसे तो अच्छी है, बट डायलॉग्स में इतनी अच्छी नहीं, गानों में अच्छी है.
1: हाँ, दिस इज वेरी वेरी इजी, डोंट वरी, इट्स नॉट वेरी टफ. वी रियली वॉन्ट All of you to travel with us, but क्या करें कि प्लेन में सीट्स काफी लिमिटेड होती हैं. फिलहाल जर्मनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जर्मनी का माहौल बनाते हैं. So Barkha, you're looking out over a romantic, scenic forest viewpoint in Berlin, okay? And वहां से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का. गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का.
3: नहीं, देसी लड़का चाहिए.
1: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी? देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है.
4: तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए.
5: कितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम.
1: ओए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ फॉरेस्ट में. कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में. कौन सी मूवी का गाना है ये?
3: फना.
1: फना इट इज. कंग्रेचुलेशंस बरखा, यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी, वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग विद टीम बिग. बट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड
3: बाय
1: देसी लड़का. देसी लड़कों ने बता नहीं दिया है कि वो रेड फ्लैग्स हैं, मतलब मेरे हिस्से के तो बता चुके हैं. तो अब मैं जर्मन लड़कों के पास जाना चाहती हूँ.
3: उम्मीद है मुझे देसी लड़कों में. वैसे तो रेड फ्लैग्स है, बट फिर भी थोड़ा सा 1% उम्मीद है मुझे.
1: हाँ, जर्मनी जाके देसी लड़का ढूंढना है. आई मीन ऑल द वेरी बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस. Hopefully you get a chance to fly with us. But congratulations, इतने लोगों में shortlist हुई है बरखा. That's a big thing.
3: Thank you so much, Mansi. Thank you.
1: Bye, बरखा.
3: I'll be waiting for the next round.
1: Very, very soon. Hopefully, fingers crossed. Bye.
3: Bye. See you.
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Dabur Pudinhara.
1: School's starting soon and we need a car.
2: Books, uniforms, everything.
1: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: The Big Jill.
6: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
7: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
8: So, पहले आप बताइए सबको कि आपको कॉल कैसे आया है, सबसे पहला स्टेप क्या किया था?
9: मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करा, बिग चेक इन स्पेस माय नेम एंड आई गॉट अ कॉल।
8: वेरी सिंपल, देखा कितना कितना सीधा सच्चा सिंपल सा एंट्री बेस है। ओके, नाउ सेकंड बेस, आपको शॉर्टलिस्ट होना है, आपको गेस करना है कि ये जो डायलॉग मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि वैसे ही ट्रिप का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में ये फिल्म, ये कैरेक्टर और ये डायलॉग आ ही जाता है। ये डायलॉग जो है कौन सी फिल्म का, यू हैव टू गेस। ओके, यू रेडी भूमिका?
9: यस, ओके, डन।
8: ओके,
10: मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
8: Which film is this?
9: ये जवानी है,
8: जवानी। ये जवानी। ओ यार भाई, तो आपने एक सेकंड नहीं लगाया गैस करने में। Okay, on a scale of 1 to 100, how excited are you?
9: More than 100, can I say?
8: Yeah. Okay.
9: Thank you.
8: So just like Bhumika, आपको करना क्या है? अगर आपको जाना है हमारे साथ जर्मनी बिग चेक इन में, आपको टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 054-309-1062.
0: Share your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
8: Alright, slow moving traffic आपको मिलने वाला है, 15 से 25 मिनट का डिले फिर भी है। If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed, there's heavy traffic near Dera Fahidi. If you're going towards Festival City, वहाँ भी 18 से 20 मिनट का डिले है। It is packed near Garud. Slow moving traffic, not really bad. Still, आपको Business Bay DIFC के पास मिलेगा. Also patchy traffic near the Dubai Hills Mall. Anything else you'd like to report, मुझे बताएं 800-1062 पर.
0: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi. Yeh hai Big Thrill and something very, very exciting happening this Friday. If you love great cinema and iconic lyrics, you have to book your tickets now. I'm talking about this amazing show that's happening on the 28th of August. Gagan Mudgal is coming to the Junction with Jadoo, The Life of Javed Akhtar. गगन मुदगल की आवाज़, जावेद साहब की जिंदगी की कहानी, आई थिंक इट इज़ प्योर मैजिक. यू कैन बुक योर टिकट्स नाउ, दे आर अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट पर. फटाफट बुक कीजिए बिफोर दे आर गॉन. एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू चांस राइट नाउ टू विन कपल टिकट्स हियर. वेरी वेरी सिंपल. इफ यू आर अ फैन ऑफ जावेद साहब, आई एम श्योर यू लव हिज म्यूजिक. आपने मुझे बताना है जावेद साहब ने लिखा है गाना, गाना कौन सा है. सोनू निगम की आवाज, शाहरुख खान का गाना है. गेस कर लिया है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's still 38 degrees, low jayega around 34, pretty humid though, filhal humidity 61% par.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill of Mansi. And over the long weekend, if you want to witness jadoo, that is magic, then you have to book your tickets. I'm talking about Javed Sahab. He is a man who's given us incredible cinema, iconic lyrics, and unki kahani Gagan Mudgal ki zubani. He's coming to the Junction Dubai with Jadoo, the life of Javed Akhtar. Incredible sham hone wali hai. Show starts at 8:15 p.m. So grab your tickets right now before they are gone, and they're available on District. Yahan bhi every single evening I give you a chance to win invites. And Naresh ji jo hain wo aa chuke hain. Good evening.
2: Good evening.
1: कैसे हैं सर आप?
2: I'm fine और अब और अच्छा हो गया हूँ.
1: आई हाय, पहली बड़ी रोमांटिक सी बातें कर रहे हो तो मैं समझ गई हूँ कि आप शेरो शायरी, अच्छी सिनेमा, गुड लिरिक्स के शौकीन होंगे.
2: जी ऑफ कोर्स.
1: So I'm assuming you're a fan of Javed साहब.
2: I like his movie. That is why I don't even miss Farhan Akhtar movies also. Like,
1: अच्छा, तो बिकॉज ऑफ जावेद साहब आप फरहान अख्तर की मूवीज देख लेते हैं. He is indeed. तो आपका कोई फेवरेट गाना है जावेद साहब का लिखा हुआ?
2: मेरे काफी फेवरेट गाने हैं, जैसे मैं अगर कहूँ तुम सा हसी
1: कायनात में नहीं है कोई,
2: मतलब नहीं है कोई, like, you know,
1: पूरे याद है आपको? तो इन्होंने जवाब भी दे दिया है, by the way.
2: जब आता है तो गाते रहते.
1: This was the song,
2: like, you know, border का that तंदे से आते हैं and all.
1: You're a fan. मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें lyricists याद होते हैं. So congratulations. आपको मिलते हैं couple invites to go and watch जावेद साहब की जिंदगी की कहानी गगन मुदगल की जुबानी. इट इज कॉल्ड जादू, द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर. एंड गगन मुदगल अपने आप में मैजिकल वॉइस से ब्लेस्ड हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा. थैंक यू नरेश, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू,
1: बाय.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabil Furniture Mall, Ood Mehta.
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
5: नहीं, ये तो मुफ्त है।
4: गुड, चलो फोन लगाओ।
1: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4? 4। कब तक वापस लौटेगा?
1: यही 4-5 दिन में।
2: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the big chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.

106.2 The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood.